यो दशैंमा सीजी ब्रांड तथा सीजी मेरिडिया का होम अप्लायंसेस र होम एंटरटेनमेंट का सामान किन्दा 1,02,000 रुपया सम्म को बचत। वॉशिंग मशीन में 6 केजी, टॉप लोड वॉशिंग मशीन में 4 केजी, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 2 केजी सॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोवेव में कुकिंग किट र एसी में निःशुल्क जड़ा, साथ ही 0% ब्याज में सजिलो किस्ता। सीजी भरोसा नेपाली को उत्सव दशैं तिहार को एक्सपीरियंस लाइफ विथ सीजी।

0: मेरा हो।
1: नेपालीहरुको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा ग्राहक वर्ग शुभ चिंतक इष्ट मित्र लगायत स्वदेश तथा विदेश में रहन् भएका संपूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दीदी बहनी सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभ कामना व्यक्त गर्दछौं।
0: प्रोप्राइटर मंजू भंडारी र विमल भंडारी, मंजू ब्यूटी सलोन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर वालिङ आर्ट जंगल रेस्टुरेन्ट भएको भवनको पहिलो तला, मोबाइल 9842698145।
2: हामी कहाँ हेयर स्टेज, बोटक्स, न्यानोप्लास्टिया, न्यानोप्लेक्स, केराटिन स्टेज, हेयर ट्रिटमेन्ट, फेसियल, फेस ट्रिटमेन्ट, जेन्स तथा लेडिज हेयर कट, सिजन अनुसार बेहुली मेकअप गर्नुका साथै हेयर कट एवं मेकअप एण्ड पार्लर सम्बन्धी प्याकेजका तालिमहरू सञ्चालनमा रहेको छ। यस्तै मेकअप, फेस केयर एवं हेयरका सम्पूर्ण एवं कस्मेटिकका सामानहरू उपलब्ध छ।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: विष्णुचन्द गुरुङ वडा अध्यक्ष एवं वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 12 परिवार।
2: विवाह जन्म मृत्यु बसाई सराई सम्बन्ध विच्छेद जस्ता सामाजिक घटनाहरू 35 दिन भित्र सम्बन्धित वडा कार्यालयमा दर्ता

0: आफ्नै छोराको बिहे गरेको दही कुराउनी लैजानु पर्ने।
1: विजयादशमी 2083 को पावन अवसर में हाम्रा पालिकावासी बुवा आमा दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरू कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं देश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
2: विश्वनाथ पौडेल अध्यक्ष, सीता थापा उपाध्यक्ष, सुशील कुमार आचार्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं आदिखोला गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय कृषि सेंजा।

नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रकाश तिवारी गाउँपालिका अध्यक्ष, सपना गुरुङ उपाध्यक्ष, युवराज अर्याल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं अर्जुन चौपारी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय अर्जुन चौपारी।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं देश तथा विदेश में रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: गोविन्द कुमार कर्मचारी नगर प्रमुख, भगवती अरियाल उप प्रमुख, अनिता पौडेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं बिरकोट नगर कार्यपालिकाको कार्यालय बैरघारी साइङ्जा।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: गरमसुर धार्मिक तथा पर्यटकीय केन्द्र वालिङ गल्याङ

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: देवबहादुर खाँड ईश्वर प्रमुख, ईशा राणा उप प्रमुख, ज्ञानराज कोइराला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं चापाकोट नगर कार्यपालिका को कार्यालय सेंजा।

विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको सुपथ मूल्यमा

0: नेपाली हरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: लक्ष्मण खत्री ओडा अध्यक्ष एवं भिरकोट नगरपालिका ओडा नम्बर 6 परिवार।
0: विवाह जन्म मृत्यु बसाई चराई सम्बन्ध विच्छेद जस्ता सामाजिक घटनाहरू घटेको 35 दिन भित्रै सम्बन्धित वडा कार्यालयमा दर्ता गरौं।

0: विजयादशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: घनश्याम सुवेदी गाउँपालिका अध्यक्ष, देवकुमारी गुरुङ उपाध्यक्ष, विष्णु प्रसाद पोखरेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं फेदीखोला गांव कार्यपालिका को कार्यालय फेदीखोला।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं देश तथा विदेश में रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: तुलसीराम रेग्मी नगर प्रमुख, देवी अरियाल उप प्रमुख, प्रदीप चन्द्र सुवेदी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं पुतली बजार नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय पुतली बजार सैंजा।

0: नेपाली हरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा सीआर सदस्य संचालक समिति सेवाग्राही लगायत स्वदेश तथा विदेश में रहन् भएका संपूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दीदी बहिनी सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: भीम प्रसाद भण्डारी शाखा प्रमुख एवं राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक लिमिटेड वालिङ शाखा, संपर्क फोन नंबर 0365900028।

0: नेपाली हरुको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में शिक्षक अभिभावक विद्यार्थी लगायत स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरुमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: सुमन कल्याण अर्याल अध्यक्ष, युक्त बहादुर बगटी प्रिन्सिपल एवं सगरमाथा आवासीय माध्यमिक विद्यालय वालिङ छ।

विजय दशमी 2083 को यस पावन अवसरमा हाम्रा शेयर सदस्य विज्ञापनदाता श्रोतागण शुभेच्छुक एवं देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। शान्ता थापा अध्यक्ष, तुलाकान्त बगाले स्टेशन म्यानेजर एवं रेडियो आदिखोला FM 105.4 MHz परिवार वालिम आठ।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: साबित्रा कोइराला कार्यवाहक अध्यक्ष बेशराज आचार्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं कालीगण्डकी गांव कार्यपालिका को कार्यालय बिरघा।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसरमा हाम्रा ग्राहक वर्ग, शुभ चिन्तक, इष्ट मित्र लगायत स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: प्रोप्राइटर लक्ष्मण अधिकारी, सफल फर्निचर उद्योग, वालिङ छ सुन्दर बजार, वालिङ एक राममाछा शोरूम, भिरकोट एक बैरघारी मेन रोड, वालिङ 8 मोड नगरपालिका जाने बाटोमा, मोबाइल 9856309888।
2: हामी कहाँ आधुनिक डिजाइन का आकर्षक सोफा, पलंग, दराज, ड्रेसिंग टेबल तथा काठबाट निर्मित सम्पूर्ण सामग्री पाइन का साथ ही अर्डर अनुसार आधुनिक डिजाइन का फर्निचर एवं फर्निशिंग का सामान सुपथ मूल्य में उपलब्ध।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहन् भएका संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रकाश तिवारी गाउँपालिका अध्यक्ष, सपना गुरुंग उपाध्यक्ष, युवराज अर्याल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं अर्जुन चौपारी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय अर्जुन चौपारी।

0: समय को साथ में जेतु सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिकै रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको पांच गरेता कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
1: रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुस् है।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं देश तथा विदेश में रहन्भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: गोविन्द कुमार कर्मचारी नगर प्रमुख, भगवती अर्याल उप प्रमुख, अनिता पौडेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं बिरकोट नगर कार्यपालिकाको कार्यालय बैरघारी सैंजा।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अर्जुन प्रकाश अरियाल महासमिति सदस्य नेपाली कांग्रेस।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजू भाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: देवबहादुर खान ईश्वर प्रमुख, ईशा राणा उप प्रमुख, ज्ञानराज कोइराला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं चापाकोट नगर कार्यपालिका को कार्यालय सेंजा।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: गुरूप्रसाद भट्टराई, नगर प्रमुख हेमान्य उपाने, उप प्रमुख युवराज अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं गल्याङ नगर कार्यपालिकाको कार्यालय गल्याङ स्याङ्जा।

0: नेपाली को महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा सीआर सदस्य संचालक समिति सेवाग्राही लगायत स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली दाजू भाई तथा दीदी बहनी सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: आशिष तिवारी शाखा प्रमुख एवं ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड वालिंग 8 शाखा परिवार, संपर्क फोन 0363414

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: गरमसुर धार्मिक तथा पर्यटकीय केन्द्र वालिङ गल्याङ

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसरमा हाम्रा ग्राहक वर्ग, शुभ चिन्तक, इष्ट मित्र लगायत स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: प्रोप्राइटर लक्ष्मण अधिकारी, सफल फर्निचर उद्योग, वालिङ सुन्दर बजार, वालिङ एक राममाछा शोरूम, बिरकोट एक बैरघारी मेन रोड, वालिङ 8 मोड नगरपालिका जाने बाटोमा, मोबाइल 98560309888।
2: हामी कहाँ आधुनिक डिजाइन का आकर्षक सोफा, पलंग, दराज, ड्रेसिंग टेबल तथा काठबाट निर्मित सम्पूर्ण सामग्री पाइन का साथ ही अर्डर अनुसार आधुनिक डिजाइन का फर्निचर एवं फर्निशिंग का सामान सुपथ मूल्य में उपलब्ध छ।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा ग्राहक वर्ग शुभ चिंतक इष्ट मित्र लगायत स्वदेश तथा विदेश में रहन् भएका संपूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रोप्राइटर बीबी चोको रामु दाई स्टाइल सटिंग सुटिंग टेलरिंग सेन्टर वालिङ आठ मोड गरिमा विकास बैंक ओरालोमा। संपर्क मोबाइल 9815564696।
0: हामी कहाँ स्कूल कलेज अफिस का ड्रेस विवाह व्रतबंध का लागि आवश्यक साथ ही कोट पैंट शर्ट सिलाई गर्नु का साथ ही सिलाई संबंधी संपूर्ण काम सुपथ मूल्य में गरिन्छ। बारिस्टा ट्रेनिंग पूरा करे जर्मनी र यूएई में 100% जॉब प्लेसमेंट।
2: अमेरिकन हॉस्पिटालिटी एकेडमी सर्टिफाइड
0: 2026-27 का लागि बारिस्टा ट्रेनिंग में भर्ना खुल्यो।
2: कॉफी बनाउने सिप सिकौ, करियर आफ्नो उज्यालो पारौ। डाफे हॉस्पिटालिटी एकेडमी, सिप सिकौ विश्व जितौ।
0: एसई वास्तु भन्दा माथि उत्तीर्ण अब बन्नुहोस्। प्रोफेशनल बारिस्टा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एएसए सर्टिफिकेशन र इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप सहित जर्मनी र यूएई में 100% जॉब प्लेसमेंट।
2: कॉफी को सिप, विदेश को अवसर, डाफे संग करियर को नया सफर। डाफे हॉस्पिटालिटी एकेडमी, सिक्लेटुंगा पोखरा।
0: संपर्क मोबाइल 9810302060 र फोन 0167571866।
2: डाफे हॉस्पिटालिटी एकेडमी, सेपिंग हॉस्पिटालिटी लीडर्स।
3: यो दशैंको शुभ कामना।
1: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसरमा हाम्रा ग्राहक वर्ग शुभचिन्तक इष्टमित्र लगायत स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
0: प्रोप्राइटर देवेन्द्र थापा, तारादेवी ब्लक उद्योग, सम्पर्क कार्यालय डब्ल्यूआईसी कम्प्युटर इन्स्टिच्युट वालिङ आठ मोड, सम्पर्क फोन 0364-41-331, मोबाइल 9855-55-331।
1: हामी कहाँ विभिन्न किसिमका ब्लक तथा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा एवं घर निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध छन्।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दासू भाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: कृष्ण खाड़ नगर प्रमुख, कविता तिवारी गैरे उप प्रमुख, जीवन गेवाली प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं वालिङ नगर कार्यपालिका कार्यालय वालिङ स्याङ्जा।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: याम प्रसाद अधिकारी प्रदेश सभापति नेपाली कांग्रेस संघ क्षेत्र नम्बर 2 प्रदेश क।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजू भाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: साबित्रा कोइराला कार्यवाहक अध्यक्ष, बेशराज आचार्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं कालीगण्डकी गांव कार्यपालिकाको कार्यालय बिरघा।

0: के पास थपलो चार आपने चल जाती
1: रेडियो आदि खोला।
2: रेडियो आदि खोला 105.4
3: विजया दशमी 2083 को इस पावन अवसर में हमारा शेयर सदस्य विज्ञापनदाता श्रोतागण शुभेच्छुक एवं देश तथा विदेश में रहन भएका संपूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। शान्ता थापा अध्यक्ष, तुलाकान्त बगाले स्टेशन म्यानेजर एवं रेडियो आदिखोला एफएम 105.4 मेगाहर्ज परिवार वालिङ 8 ग्याङलिङ

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: श्याम धीराज मल्ल संयोजक एवं वीआईपी टोल विकास संस्था परिवार वालिङ आठ आफ्नो टोल सफा राखौ, टोलवासीको परिचय दिउ, साथै पैदल यात्रा महानुभावले फुटपाथको प्रयोगमा ध्यान दिनु भए सम्भावित दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग गरौं।

0: नेपालीहरूको महान चाड़ विजयादशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: नमलाल डुम्रे वडा अध्यक्ष एवं वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 13 परिवार।
0: विवाह जन्म मृत्यु बसाई सराई सम्बन्ध विच्छेद जस्ता सामाजिक घटनाहरू 35 दिन भित्रै सम्बन्धित वडा कार्यालयमा दर्ता गरौं।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजू भाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: घनश्याम सुवेदी गांवपालिका अध्यक्ष, देवकुमारी गुरुंग उपाध्यक्ष, विष्णु प्रसाद पोखरेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं फेन्दीखोला गांव कार्यपालिकाको कार्यालय फेन्दीखोला।

0: नेपाली हरूको महान पर्व विजय दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा सीयर सदस्य संचालक समिति सेवाग्राही लगायत स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका संपूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दीदी बहिनी सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: महेश कुमार गौतम शाखा प्रमुख प्राइम कमर्शियल बैंक वालिङ। संपर्क फोन नंबर 0367441

0: रेडियो आदि खुला 105.4
1: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं देश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
2: तुलसीराम रेग्मी नगर प्रमुख, देवी अर्याल उप प्रमुख, प्रदीप चन्द्र सुवेदी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं पुतली बजार नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय पुतली बजार स्याङ्जा।

0: नेपाली हरको महान पर्व विजय दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: शेरबहादुर श्रेष्ठ अमृत ओडा अध्यक्ष एवं वालिङ नगरपालिका ओडा नम्बर 9 ओडा परिवार।
2: विवाह जन्म मृत्यु बसाई सराई सम्बन्ध विच्छेद जस्ता सामाजिक घटनाहरु 35 दिन भित्रै सम्बन्धित ओडा कार्यालयमा दर्ता गरौं।

0: एंड रिपेयरिंग सेंटर वालिंग आठ मोड़ संपर्क नंबर 9847875871।
1: हमी कहाँ विभिन्न कंपनी का मोबाइल स्मार्ट वॉच सिम कार्ड रिचार्ज कार्ड इंटरनेट को राउटर पाने का साथ ही मोबाइल मरमत पनि गरिन्छ।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: गरमसुर धार्मिक तथा पर्यटकीय केन्द्र वालिङ गल्याङ।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: सबिता कोइराला कार्यवाहक अध्यक्ष बेशराज आचार्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं कालीगंडकी गांव कार्यपालिका को कार्यालय बिरघा।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: केशर बहादुर खड्का ओडा अध्यक्ष एवं भिरकोट नगरपालिका ओडा नम्बर 3 परिवार।
2: विवाह जन्म मृत्यु बसाई सराई सम्बन्ध विच्छेद जस्ता सामाजिक घटनाहरू घटेको 35 दिन भित्रै सम्बन्धित ओडा कार्यालयमा दर्ता गर।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहन्भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: कृष्णबहादुर थापा वडा अध्यक्ष एवं भीरकोट नगरपालिका वडा नम्बर 5 परिवार।
2: विवाह जन्म मृत्यु बसाई सराई सम्बन्ध विच्छेद जस्ता सामाजिक घटनाहरू 35 दिन भित्रै सम्बन्धित वडा कार्यालयमा दर्ता गरौं।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं देश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: सूर्य बहादुर कुंवर अध्यक्ष, भगवती शर्मा उपाध्यक्ष, परशुराम उपाध्याय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं बिरुवा गांव पालिका गांव कार्यपालिका को कार्यालय बिरुवा।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: देवबहादुर खान ईश्वर प्रमुख, ईशा राणा उप प्रमुख, ज्ञान राज कोइराला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं सापाकोट नगर कार्यपालिका को कार्यालय सेंजा।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: दिपेन्द्र केसी, प्रदेश सभापति, नेपाली कांग्रेस, सेन्जा क्षेत्र नंबर 1।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: गुरुप्रसाद भट्टराई नगर प्रमुख हेमान्य उपाने उप प्रमुख युवराज अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं गल्याङ नगर कार्यपालिकाको कार्यालय गल्याङ सेंजा।

0: सुनिए ना, आइए हम लोग अनिमा 10 बजे तक छा
1: इस समय को साथ में जेतु सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिक रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़ी को 5 गड़े कुना को लाइन 315 जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: रेडियो आदि खोला 105 थोप्लो 4 आफ्नो ख्याल राख्नुस् है।

हजार इंडक्शन निःशुल्क। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में 6 केजी, टॉप लोड में 4 केजी और सेमी ऑटोमेटिक में 2 केजी सॉफ्ट एक्सेल निःशुल्क। डिश वॉशर किन्दा 2 वटा वॉशिंग टैबलेट निःशुल्क। आइडिया दस को खुशी घर।

दशैंमा सीसी ब्रांड तथा सीसी मेरिडिया का होम अप्लायंसेस र होम एंटरटेनमेंट का सामान किन्दा 1,02,000 रुपया सम्म को बचत। वॉशिंग मशीन में 6 केजी, टॉप लोड वॉशिंग मशीन में 4 केजी, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 2 केजी सॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोवेव में कुकिंग किट र एसी में निःशुल्क जड़ा, साथ ही 0% ब्याज में सजिलो किस्ता। सीसी भरोसा नेपाली को उत्सव दशैं तिहार को एक्सपीरियंस लाइफ विथ सीसी।